गुरपुरै मेरी राख लई, गुरपुरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मह दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। निवरे दूत दुष्ट बहराही,

बेचारा प्रभु मेरे का बड़ प्रताप जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कही है मन की दुविधा बिनस जाहे परम पद लही बलिहारी गुर अपने द्योहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार करत ना लागी बार परम सम्मान योग चवर छत्र दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों अज किन्ने भागा वाले ओ शरीर ने जेड़े मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी दे अंदर ए जो ईसवी सन है इस दे 1998 दा ए साल इनू बस डेढ़ घंटे बाद पौने दो घंटिया बाद आपां अलविदा कर देना ते उस 1999 नूं जी आया कहना जिस दा खास करके सिख जगत दे अंदर बड़ा चाह ते उमा दो पक्ष ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी अंदर अज ओ भी लोक होणगे जिहड़े नशे विच गुट होणगे जिहड़े नच टप रहे होणगे पर कुर्बान मेरे गुरु नानक साहिब तेरे तो लोक इस वकारां दी अग विच सड़ रहे ने मेरे साहिब तू अपणियां नूं बांह दे के इस अग विचों बाहर कढ ले हजूर ने बाणी विच क्या अगन सागर बूढ़त संसारा नानक बांह पकड़ सतगुर निस्तारा कुर्बान जाइयो उस गुरु तो जिन्ने सानू बाणी दित्ती जिस ने कृपा करके सानू साध संगत दित्ती जिस गुरु जी ने कीर्तन दी दात दित्ती नाम दी दात दित्ती ते गुरु रामदास जी ने इसे समय नूं तक एक गल कही सी कि गुरु कोल भी केवल ओ बह सकदा है जिदे अंदर सच्यार अंदर कोई सत दी कणी है जां जो गुरु नूं इश्क करदा है ते उत्थे तां ही हजूर ने कहा सी कि कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले सच्यार सिख बैठे सतगुरु पास गुरु मेहरामत करे मैं अर्ज कर रहा अपने उस प्रसंग नूं वैसे मैं अज कुछ लाना अगे तोरना जो पिछले कई दिनों तो इस स्टेज तो आपां गुरु कलगी वाले दा पुरब मना रहे गुरमुख प्यारे प्रबंधकां वल्लों हुक्म भी सी कि जदों गुरु गोबिंद सिंह जी दा पुरब आवे ते उस सरबंस दानी दियां रज के कथा कहानियां कीतियां जां खास करके मेरे बुजुर्ग बैणीवाल साहब उन्हां वल्लों ए मैं हुक्म कह सकना उन्हां तो छोटा वा आओ उस गुरु दियां भी आपां बातां अज करनियां ने जिथे अज 99 दा ओ साल भागां वाल आ रहा है अज तो 300 साल पहला आनंदपुर केसगढ़ साहिब जिथे अज साडा तख्त है उस पहाड़ी दी चोटी ते खलो के हजूर ने हिंदुस्तान दे उच जातियां नूं ते जालम हाकमां नूं एक गल कही सी जां की जात गोत कुल माही सरदारी ना भई कदाही इन्हीं को सरदार बनाऊं तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं ऐसे वक्त ही मेरे साहब ने कृपान कट के पहाड़ी ते क्या सी कि कदी समा आवेगा कि रात्न के संग रंक लड़ाऊं शेरों के संग पेट पढ़ाऊं कहन लगे सवा लाख से एक लड़ाऊं
तब है गोबिंद सिंह नाम कहा। ध्यान रखना ए आवाज आज तो 300 साल पहला आनंदपुर की धरती तो उठी ते उस आवाज नू कोई दबा नहीं सकिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कृपा कर 99 आपा तकने पया इन जी आया कह रहे हैं, पर प्यारियो ए 300 साल तकने 400 साल शायद साडे विचों कोई तके ते आए साल जा ए समय ता ही सफल है जे किते गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा विच अज अरदास कर दिए कि मेरे दातिया तेरा ए 300 साल खालसे दा साजना पुरब आ रहा है, तू कर निरामत इन्हां सुक्यां किरदियां विच अमृत दी झड़ी ला दे, तू विछड़िया नू मिला लै। ओही आनंदपुर दी धरती है जिथे कदी कुछ कागज ते लिख के चले गए सन बधावा दे के, पर अज कृपा कर कागज नहीं साडे तां मना उते बधावे लिखे हुए ने। शायद तू इन्हां मना नू धो दे, ए बदावे दी जड़ी काल के उतर जाए ते दातिया महा सिंह दी तरह गोद विच तू ही सानू लै के कह दे नहीं होए अखां विचों नीर ना छट महा सिंह तू मेरा ही है। गुरु बख्शिश करे प्यारियो जिथे आपां 99 दा साल आ रहा मैं कह के अगे तुरना वा, अज साडी जिंदगी दा एक साल घट भी गया है। जिथे नू जी आया कह रहे हैं ना हजूर ने बाणी विच कह कहिंदे ने जदों मां दी गोद विच पुत्तर हुंदा है मां लोरियां दिंदी है ते जदों उस बच्चे दा जन्म वाला दिन आउंदा है साल बाद ते असीं रिश्तेदार साख संबंधी इकट्ठे करने आ ते कहने आ अज मेरा पुत्तर इन्ने साल दा वड्डा हो गया है, पर भगत कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहब विच कहिंदे ने नहीं मां ए ना क्या कर जन्म वाले दिन तू कहनी है मेरा पुत्तर वड्डा हो रहा है, कर कदी अपने सिर ते झाती मार तू गोदी विच लै के लोरियां देनी है के जन्म दिन वाले दिहाड़े नू शांडल मनानी है, पर नहीं मां ए वड्डा नहीं हो रहा ए असल विच दिनों दिन घटदा पिया। असल विच साडी जिंदगी विच भी एक साल अज घटिया नहीं, हजूर ने बाणी विच कहा जननी जानत सुत वड्डा होत है। पहली पंक्ति ए भगत कबीर साहब जी दी गुरु ग्रंथ साहब विच जननी जानत सुत वड्डा होत है इतना कु ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है, मोर मोर कर मेरा मेरा कह के अदक अदक लाड धर किन्ना प्यार करनी है, पर पेकत ही जमराओ हसै मौत क्यों वेख के हकदी है दिन वध दे नहीं पै दे घटदे पै। आपां याद रखिए कि अपना उस दिन नेड़े आउणा है। आओ साध संगत जी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता सरबंश दानी जिन्हां दे पवित्र इतिहास नूं कल भी आप संगतां नूं सांझा कीता सी, मेरे साहब दे वड्डे साहबजादे बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह शहीद हो गए ने। शाम दा वक्त है उधर सूरज छिपया है, उधर कलगी वाले दे छोटे साहबजादे बाबा जुझार सिंह जी ने शहादत दा जाम पीता है ते मेरे गुरदेव ने अज भी सोदर रह राज साहब दा पाठ कीता है। आओ हजूर किवें चमकौर विचों निकलदे ने, किन्ना किन्ना राहां ते मेरा माही जांदा है ते की अपने उस अकाल पुरख नू संबोधन करदा है। आपां उस इतिहास नू अपनी नजर सामने लियाईए ते सुरत नू उस धरती ते लै जाओ जिहड़ी साडे तो सैकड़े को दूर है, पर ध्यान नाल कलगी वाले दी उस धरती दी शो सुरत राही ओदी खाक नू नमस्कार करिए। करो कृपा मैनू आसीस बख्शो कोई भी रचना हजूर दी बख्शी फतेह तो वांझी ना रहे जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप जी दे दोनों साहबजादे शहीद हो गए ने ते भाई साहब भाई दया सिंह जी गुरां ने सोदर रह राज साहब जी दे पास तो बाद

सतगुरु तेनू छड के नहीं ते सतगुरु ने बचन किया बुढ़िया जा मैं तेरे नाल अज बचन करना वा तेरे तो ओले कदे ना होसा मैं किसी भी रूह विच होवांगा पर तेनू पता होवेगा मैं किथे टिकिया होया वा। पंक्ति बड़ी रमज भरपूर है तेरे तो बुढ़िया ओले कदे ना होसा। बाबा बुढ़ा जी नमस्कार करके पिछा आ गए ते जिदन भाई लैणे नू गुरगद्दी दिती लैणे तो गुरु अंगद बने पहली नमस्कार गुरु नानक साहब ने कीती। उस वक्त माता सुलखनी भी कोल आई उन्हें एक शब्द कहा सी दाता लै गद्दी तां सेवक नू मिल गई पर पुत्रां दा की बनेगा इन्हां दा प्रसाद पानी। ते गुरु साहब ने जेड़े बचन कह कवि संतोख सिंह ने गुरु प्रताप नानक प्रकाश भी दिते ने

परम सम्मान योग युग युग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाही मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों हजूर दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जिया ने सत्कार योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी खुरां पासों सरवण कीतिया ने कल दा दिन जो बतीत होया है कल दे दिहाड़े धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव दा गुरगद्दी नशीनी पुरब सी ते गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पुरब नू आपां अज मना रहे हां। गुरु नानक साहब जी दे इस घर दे अंदर जदो आपां इतिहास नू गुरमत नू पढ़ने हां ते एक चीज बड़ी विलखण सानू जड़ी नजर आउंदी है इत्थे गुरु दी कृपा ते निर्भर करदा है। 60 साल दा बजुर्ग बाबा भी जे किते गुरु के चरणा भी जुड़ के सेवा करे ते जिस समय लोग कहिंदे ने 70-72 साल दी उम्र विच बंदे नू सूझ कोई नहीं शब्द वरतदे ने ए 70-72 गया है। 12 साल गागर ढो के 72 साल का बजुर्ग भी सिख तो गुरु बन सकता है। यही विलखणता है कि इत्थे 5 साल ते 3 महीने की बाल उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी वह भी गुरु बन सकते ने ते कृपा गुरु करे तो 72 साल का बजुर्ग भी गुरु बन सकता है। आओ गुरु अमरदास जी दे पावन पवित्र इतिहास की और बाणी की विचार आपने करनी है। जड़ा अज का दिन गुरगद्दी पुरब आप मना रहे हैं इस दी विचार इस दिन के संबंध में गुरु कृपा न आप विचारने कृपा करके जितने भी बैठे हो ना एकाग्रता जरूर बख्शिया जे। कोशिश करो इस खिंडे हुए मन नू गुरु अमरदास जी के चरणों में अज टिका दईए। जे तां बुद्धि तारक केवल तर्क करन वाली नाल सुणांगे ते याद रखना ओ कहा होया केवल तर्क दी बिरती वाला लगेगा ते जदों प्रतख गुरु नू हाजर नाजर जान गुरु के बचन सरवण करांगे ते सतगुरु गुरु अमरदास दी कृपा वरसेगी। विचार आरंभण तो पहला सतगुरु की बख्शिश कीती हुई गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा अमरदास जी का जन्म पिंड बासर के जो अजकल जिला अमृतसर के अंदर है सन 1479 नू बाबा तेज भान जी दे ग्रह विखे होए। बाबा अमरदास जी गुरु नानक साहब जी तो उम्र करके केवल 10 साल छोटे ने। गुरु नानक साहब जी का आगमन सतगुरु का प्रकाश सन 1469 नू राय भोए की तलवंडी ते होया गुरु नानक साहब जी का ते बाबा अमरदास जी का प्रकाश इन्हों का जन्म आगमन शब्द वरत लईए के पिंड बासर के 1479 नू होया 10 साल बाबा अमरदास सतगुरु गुरु नानक साहब तो छोटे ने। बाबा अमरदास जी दे पिता दा नाम तेज पान है। बाबा अमरदास जी 4 भरा ने ते अमरदास जी सब तो वड्डे ने।
मैं शब्द वरत्या बाबा इस करके वरत रहा, अजे वो गुरगद्दी ते विराजमान नहीं। बाबा अमरदास सब तो वड्डे ने, छोटे तीन भरा ने, ते इथों तक ये कारोबार अपना जिमीदारा भी पिंड विच करदे सन। उस तो इलावा महिमा प्रकाश विच तां इह भी लिखिया रेशम दे कपड़े दा वपार करदे ने। कहण तो मुराद वपार भी करदे ने, दुकानदारी भी करदे ने, ते बाबा अमरदास जी का पूरा परिवार जिहड़ा जिमीदारा भी करदा है। बाबा अमरदास जी दे संतान इन्हां दे घर दो पुत्र ते दो पुत्रियां पैदा होईयां। वड्डे दा नाम सी बाबा मोहन जी, छोटे पुत्र दा नां है बाबा मोहरी जी, वड्डी पुत्री दा नां है बीबी दानी जी, छोटी बच्ची दा नां है बीबी भानी जी। बीबी दानी जी दा आनंद कारज होया भाई रामा जी दे नाल, ते बीबी भानी जी दी शादी उन्हां दा ब्याह उन्हां दा आनंद कारज होया भाई जेठे दे नाल, जिहड़े बाद विच गुरु रामदास बने। बाबा अमरदास अपने पिंड विच टिके ने, पिता इन्हां दे भी दया दी धर्म दी मूर्त ने, ते इन्हां दे मन विच एक फुरना उठदा जिहड़ा मन दा टिकाओ वे। जिहड़े असी प्रभु तो कई जन्मां दे विछड़े आ, कोई तरीका है कि अंदर दी भटकना दूर हो जाए ते उस प्यारे प्रभु जी दे चरणां विच लीन हो जाइए। ते इसे गल नूं मुख रख के बाबा अमरदास जी ने एक टीचा मिथिया है कि हर साल मैं गंगा ते जाके इशनान करना, दान पुन करना, आए गए दी सेवा करनी है। हो सकता है कि गंगा दा इशनान करन दे नाल मेरे इस मन नूं टिकाओ मिल जाए, मेरा अंदर किते भटकनों बच जाए, मैं उस प्रभु दे चरणा विच लीन हो सकां। ते बाबा अमरदास एक दो साल नहीं, 19 वारी ओ तीर्थ इशनान करन गए ने। कईयां ने शब्द भी वरत्या, खैर तीर्थ इशनान गंगा इशनान हर वार करन जांदे ने, ते महीनियां बद्दी समा लगदा पिंड बासर के तो गंगा इशनान करना, ते जाना जाके उत्थे

प्रसाद पानी उन्होंने तैयार करना ते रस्ते की थकावट दूर कर ली। जितने दिन भी कोई रहना चाहे ते वह विद्वान पंडित अपने घर विच रखदा सी ते यात्रियों का एक सुभा सी कि उहदे घर विच दो चार दिन आराम करन तो बाद जान लग्या उहदी तली ते कुछ ना कुछ माया जरूर रख जांदे सन भी चलो ये बंदा सेवा करदा है। बाबा अमरदास अज ये भी उस पिंड विच पहुंचे ने उस पंडित विद्वान दे घर अंदर उहदी सरां दे अंदर उन्होंने बड़े आराम दे नाल जाके प्रसाद पानी छकिया। कह लगे गर्मी दे दिन सन ते बाबा अमरदास जी उहदे घर तों बाहर निकल के उहदे लवाए हुए बाग दे अंदर जाके टिक गए ते गर्मी अतदी पैंदी है। बाबा अमरदास उस रुख की छां थले टिके ने ते किन्ने इस पंडित का नाम सी दुर्गो सार सुत भिंबी गोद दा सी है। ए पंडित अपने घर तो बाहर निकलिया बाग विच पए हुए यात्रियों दे कोलो लंघिया ते ज्योतिष विद्या दा माहिर किन्ने उस वक्त इस पंडित ने ना बाबा अमरदास जी नूं लेटिया देखिया ते बाबा जी वक्खी परने हो के पए ने चरणा दियां दोनों तलियां दिसदियां पईयां ने। विद्वान पंडित सी बाबा जी दे चरणा दी तलियां विच उहने पद्म देखिया ते देख के सतगुरु के बाबा जी दे चरणा विच खलो गया। कहन लगा हे मना मेरी विद्या कदी झूठी नहीं हो सकती जे इहदे चरणा दे अंदर पद्म है ते एक गल ध्यान विच रखना जां ते इह आउण वाले समय दे अंदर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा ते जां इह आउण वाले समय दे अंदर अध्यात्म वर्ती बहुत उच्चा महापुरश होवेगा। कितना समा वह बाबा जी दे चरणा दे पद्म नू देखदा रहा। बाबा अमरदास जी उठे ते उठ के जदों अगे तुरन लगे ते उस वक्त सोचिया जिस पंडित ने इतनी सेवा कीती है कितना चंगा होवे जान लग्या मैं कुछ ना कुछ इन्हां नू माया दे दिया। अपनी बांसुली थैली खोली कुछ कु माया आवाज दे के कहन लगे पंडित जी तुसी आउण जाण वाले यात्री नू विश्राम लई थां देंदे हो ते मैं चाहना कुछ सेवा तुहाडी करां। ते उस वक्त इस दुर्गो पंडित ने हाथ जोड़ के कहा कहन लगे बजुर्गा अज नहीं कदी समा आउणा है मेरी गल याद रखी जां तां बनेगा बहुत उच्चा भारी सम्राट तू राजा ते जां बनेगा बहुत उच्चा अध्यात्मक वर्ती महापुरश मैं तेरे दर ते मंगण आवांगा। अज मैं थैली दे पैसे नहीं लैणे जितन ए रेखा रेखा फलेगी जितन तेनू भाग लगेगा उदन मैं झोली अड के अपने आप तेरे दर तो मंगण वास्ते आवा। सतगुरु बाबा अमरदास मन विच प्रसन्न भी होए कहन लगे पंडित मैं ता कितना समा होया गंगा इशनान करन जाना वा अजे तक ओदे दीदार नहीं होए अजे तक मेरे अंदर दा टिकाओ नहीं मैनू मिलिया ते ए रेखा की करेगी। ते पंडित ने कहा कदी समा आवेगा ए रेखा भाग जरूर लाएगी ए चक्र चिन्ह जेड़े मैं पढ़े ने बिल्कुल सच होणगे। कहिंदे ने बाबा अमरदास वापस पिंड बासर के आउंदे पए ने जिथों गुरगद्दी वाले पासे नूं आपां अज तुरना। जदों वापस आउंदे पए ने ते एक ब्रह्मचारी मिले है इतिहास इहदे बारे खामोश है कि उस ब्रह्मचारी का नाम की सी इन्हां ते दस दिता जिन्हें पद्म पढ़िया पद्म देखिया उहदा नाम दुर्गोवे पर उस ब्रह्मचारी का नाम नहीं पता जिन्हें बाबे अमरदास के नाल कुछ समा संगत की। भाई वीर सिंह लिखते ने करीब एक महीना ब्रह्मचारी बाबा अमरदास जी के नाल रहे तुरद्या तुरद्या सफर मकांद्या ये अपने पिंड बासर के आ गए ते अज ब्रह्मचारी की शाम नू जदों जल पानी नाल सेवा बाबा अमरदास करन लगे ते इस ब्रह्मचारी ने पानी का गिलास हाथ विच पकड़िया ते इको दम सब तो पहला ए सवाल कीता बाबा आपां कितने दिनां तो इकट्ठे तुरे आउने आं तू प्रभु दियां बातां भी बड़ियां करने तू गंगा मैया दी सिफत दे गीत भी गाने पर मैनू अजे तक तेरे तो एक गल पुछनी याद नहीं रही मैनू दसेगा तेरे गुरु का नाम की है केड़ा गुरु वे जिदे चरणा विच टेक के तू दात लई है केड़ा गुरु वे जिदे मंत्र नू तू जपना है। ते उस वक्त बाबे अमर

0: सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता ले रहे सी। आओ जितने को सोज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नूं भी चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण कीता है बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहया अहमिस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गया। ए शब्द दी रहाओ दी तुक सी। पहलियां पंक्तियां सन गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै कर करनी कस पाइय भाठी भवन प्रेम का पोचा इत रस अम्यो चुआइय। ते इस शब्द दे अखीर दी तुक सी कि गुरु नानक साहब एक जोगी नूं संबोधन कर रहे ने। कहो नानक सुन भर थर जोगी। इहदा मतलब ए शब्द किसे जोगी नूं संबोधन करके उच्चारण किया। पर चेते रखना ए शब्द केवल उस समय तक उस जोगी दे जीवन तक सीमित नहीं सी। ए शब्द अज भी गुरु के सिखां नूं एक चेतावनी दिंदा है ते नाम रस नाल जुड़न दी प्रेरणा दे रहा है। शब्द असां सुणिया बाबा नानक जी नूं जोगी मिलिया है। इन्ने गल कीती है लिव दी, गल कीती है अनहद शब्द दी। ते जोगियां दे मत मुताबक उन्हां ने प्याला भर के नशे दा पेश कीता है, शराब दा पेश कीता है। ते बाबा जी पुछदे ने इह की, कहण लगे एक वारी पी लईए ते परत के दिन चढ़े तक इहदा नशा उतरदा नहीं। ते इन्नी टेक के समाधि लाई दी है कि शरीर नूं थकावट भी महसूस नहीं हुंदी। ते बाबा जी कहण लगे भलिओ इह प्यार किवें कीता जे। ध्यान देना, कह लगे भांडे विच पानी पाया सी, पानी पा के विच गुड़ पाया, गुड़ दे विच किकर दे छक पाए ने, अमवे दे फुल पाए ने। पहला एक कच्चा रस तैयार होया, परत के अग दी भट्ठी ते भांडे नूं रखिया ते इहदे चौगिरदे आपां भांडे उपर होर बथल फिट कीता, उहदे विच नाली लाई है ते भांडे उपर जिहड़ा बथल फिट कीता होर भांडा फिट कीता है। ते उहदे चार चफेरे असीं मिट्टी दा पोचा फेरिया ते थल्लो अग बाली ते जिहड़ा इहदा अरक निकलिया इहनूं असीं रस कहिंदे आ। इक वारी पी लईए ते रात भर इहदा नशा उतरदा नहीं। इशारा सी शराब वल। बाबा जी कहण लगे शराब दा नशा नहीं, उह रस की होए जेड़ा शाम नूं पीता होवे ते सवेरे उतर जाए। ते कहण लगे मैं उस नाम रस दे प्याले नूं पी चुका हां ते इहो जिहा आनंद अंदर बन गया है कि चेते रखो उहदा नशा उहदा सरूर उहदा रस कदी भी उतरदा नहीं। ते जोगियां ने पुछया इह रस किवें तैयार हुंदा है। ते बाबा जी कहण लगे जोगियो गुड़ कर ज्ञान परमेश्वर दे बख्शे हुए ज्ञान नू गुर बनाया ध्यान कर पावे ओदे नाम विच ध्यान जोड़ना मैं इनू अमवे दे फुल बनाया कर करनी कस पाई है ते उच्चे आचरण नू किकर दे सक बना दिता है पाठी पवन आ शरीर नू पठी बना दिता है इस मोह दी मोह नू मैं साड़न तुरिया वा पाठी पवन तुसी मिट्टी का पोचा देंदे हो प्रेम का पोचा ते एदे विचो शराब नहीं एक रस अमेओ चुआईया एदे विचो अमृत दीआं बूंदा डिगदीआं एक रस अमेओ चुआईया कह लगे फिर बाबा हे जोगी मन मत वारो मन मस्त हो गया नाम रस पीवे सहज रंग रस रहा एमस बनी प्रेम निव लागी शब्द अनाहत गया एमस दा अर्थ हुंदा दिन ते रात एवो जिहा सुरूर ओ विचार है कि मेरे अपने अंदर ही ओ शब्द सुनाई दे रहे ओ शब्द आप जी ने सरवण किया ते जे आपां कह दईए भई ए कले जोगी वास्ते सी ते ध्यान रखियो गुरु के सिखो बाबा नानक जी ने इस शब्द विच कले जोगी नू नहीं हर प्राणी मातर नू कह जिस नशे पिछे तू जीवन बर्बाद कर रहे इस नशे ने ना लोक सवार नहीं ना परलोक सवार नहीं ते कई बारी कोई सज्जन कहिंदे ने कि गुरु ग्रंथ साहिब विच शराब दे मुतल्लक कुछ बचन कीते ने हां बाबा अमरदास जी एक बचन करदे ने कहिंदे ने मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए जित पीता मत दूर होए बरल पवा विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जिदे तीन नाल अपने पराए दी पछाण नहीं ओहो जे बंदे नू तां रब दी दरगाह विचों भी धक्के पैंदे हुण गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी भगत रविदास जी दा इक शब्द हुंदा नागर जना मेरी जात बख्यात चमारन उस शब्द विच इक तोके कहिंदे दुनिया ने सब तो पवित्र गंगा नदी नू मन्निया हिंदुस्तान दे लोगां नू पर भगत रविदास कहन लगे जेकर गंगा दियां लहरां दे पानी दी भी शराब कोई कढ लै ते रब दी बंदगी करन वाला कदी ओहदे वल झाकदा नहीं उहनां दा बचन है सुरसरी सलल कृत बारनी रे के जेकर सुरसरी दा अर्थ है तू गंगा दियां लहरां दी शराब बना लै सलल दा अर्थ है लहर सुरसरी सलल कृत बारनी रे पर नाल कह दिता संत जन करत नहीं पानंग सतगुरु गुरु साहिब जी ने ओ रस दिता जेड़ा रस नाम दा कदी उतरना नहीं खैर गुरु नानक साहिब महाराज जी दा पवित्र इतिहास आपां कल विचार कीती सी गुरु नानक बाबा जी ने सज्जन ठग तो सज्जन भाई बना दिता है अगे लोकां नू ठगदा सी अज एहो जिहा सज्जन बना दिता नाम दा व्यापारी बन गया गुरु नानक साहिब महाराज सज्जन तो बाद हर द्वार दी धरती ते पहुंचे इत्थे मेरे दाता जी ने कुछ एहो जिहा कौतक वरताए जेड़ी कई मुद्दतां तो उन्हां दी मनौत सी एक परंपरा बनी हुंदी सी ते पांडे ने मर्यादा बनाई सी ते गुरु नानक दे उस दलील ते नाम दी बरकत सामने कोई खलो ना सकिया हर द्वार पहुंचे ने अजे सूरज दी टिक्की निकल रही है ते लोग गंगा विच इशनान पै करदे ओ लोग तन नू तां धो रहे ने पर मन उन्हां दा दसी पासी धामदा पिया तन धुपदा पिया पर मन धामदा है मन धुपदा नहीं मैं बेनती की धामदा दर ते दौड़दा पे पिंडे ते पानी पै रहा पर मन ते उस पानी दा असर नहीं ते कुछ कूने पानी दियां बुक्कां भरिया ने ते सूरज वल पानी पै सकदे ने ते बाबा नानक जी कहिंदे ने मरदानिया तू खलो किनारे ते आ देख पानी पै सिंजदे ने चढ़दे नू आपां वी अपने घर दा कोई सोचिए बाबा नानक जी पानी विच प्रवेश कीता ते लेंदे नू पानी झटना शुरू कर दिता पानी सिंजन लगे ते जदों बाबा नानक जी इकले लेंदे नू पानी सिंजदे पए ने हुण इन्नी भीड़ सी कहन लगे देखो आ बंदा कौन है ए हिंदू है ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਦਈਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਝੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੇ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਨੂੰ ਦੇਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਏ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਫਸਲ ਬੀਜੀਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਸੁੱਕਦੀ ਪਈ ਏ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੋ, ਅਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵੱਜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਬੀਜ ਪਿਆ, ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਏ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਗੰਗਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਰੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਪਾਣੀ ਅੱਪੜ ਜਾਏਗਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਣ ਆਇਆ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਲੋਕੀ ਸਿੰਜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋ ਦੂਰ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸੂਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਆਂ ਤੇਰੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਆਂ ਦੂਰ, ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕੁਆਂ ਦੂਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਏ, ਪਾਣੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਵਾੜ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੰਬਰ 37 ਤੇ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 12 ਤੇ 13 ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਏ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਉਦਣ ਵਾਪਰਿਆ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਣੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਸਲ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਦਣ ਵੀ ਭਾਣਾ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਪਾਇਆ ਉਦਣ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਲੂਸ, असी भावे नगर कीर्तन कहने जलूस अखर माड़ा नहीं, बादशाह का पूरा शानो शौकत नाल बाहर निकलना इनू जलो तो जलूस बनिया। पर अज असी अखर वर दिता जिस बंदे की बदनामी होवे कहने कर दिता इहदा जलूस। एक अखर है बकना, आम तौर ते असी बकना अखर बकवास नू कहने, पर गुरु ग्रंथ साहब कहने बकना अखर भी माड़ा नहीं। कोई जन हर्षो देगा जोर चरण गहू, अगला अखर है बको शुभ रसना। कहने मैं अपनी जुबान तो बोला की बोला, जिन्हें मेनु रब ने जोड़िया मैं ओदे चरण घुट के पकड़ा। चरण गहू बकू शुभ रसना, दीजे प्राण अकोर अकोर दर ते भेटा, मैं अपने प्राण भी ओदे चरणा विच भेट कर दे। खैर जेड़ी मैं बेनती कर रहा, भाई गुरदास कहिंदे ने जिदन जमया से उदन माया ने प्रभाव पाया, विचों गर्दा निकल आया, खत्म विसार दुनी चित लाया। जिदन जन्म होया भलिया कोई करोड़ा विचों विरले जेदी लिव जुड़दी आ, नहीं तां लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ते भाई गुरदास जी ने बड़े कमाल दे बचन कहे, कहिंदे ने जिदन जमया से उदन साई विछरिया, पर जिदन विआह होया उदन मां प्यो नूं विसार दित्ती। पर सारिआं ते गल नहीं टुकदी, जेड़े केवल मां बाप दी सारा जीवन तां बेइज्जती करदे रहे ते मरण तो बाद पानी लै लै के ते रोटियां लै लै भाइयां ते पंडतां दे पिछे तुरदे रहे, उहनां नूं भाई गुरदास कहिंदे पए। कहिंदे ने कामण कामणे आरिए कीतो कामण कंत प्यारे, नी तूणे हारिए इस्त्रिए तू कामण ने इस्त्री ने पति ते टूणा क्यों जा कर दिता। जमे साई विसरिया, जिदन जन्म होया सी उदन रब नूं भुला दिता, विवाया मां प्यो सारे, जिदन शादी होई
1: सतना है, उनके ध्यान करना है। तो सतगुरु गुरु का गोचर अमृत लोग सारे निर्माण मुकम्मल है। आप जी ने कहा कि हम गुरु कर रहे हैं वो सभी बहने हैं, इसलिए सारी संतन बेनती है अपना मान बढ़ा के सभी तरह मानस सदगुरु पर भी प्रकाश कर दिए, सुखी प्राप्त करो अतुल अपने जीवन सफल बनाए। बहुत सारे प्रोग्राम बाल कार्य को श्री शंकर सहवान में लड़ी चल रही है, जिस करके संख्या हम काफी जुड़ रहे हैं, संख्या की मेरी चलती है। सारी संख्या बड़े ख्याल है गुरु का रूपये हम सुख सेवा की दिशा पा रहे हैं, इसलिए सारी संख्या का दुख को धन्यवाद है। ग्रह को दो बनाए कभी कथा दूर जाए, अरे अपने जीवन में दूर करना जोड़े और हमारे कथा में जुड़िए। दो ही घंटे वास्ते अवसर के आज भी कथा के नाम जोड़ेंगे, साढ़े आठ बजे तक आज भी कथा न जोड़ते आज भी कथा होता है। ठीक है, ओम
2: सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सै पं गुरप्रसाद जप आदि सच योगादि सच खैपि सच नानक خوشی پی سچ جیتا سمند ساگر نیر پڑیا تیتے اوگن خمارے دیا کرو کچھ مہر اپاو ڈوب دے پتھر تارے جیڑا اگن برابر تپے

जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखश फारे कर आज। फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज। सुदामा अपदा ते राखिया, गणका पड़त पूरे ते काज। श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए, राखो दास पाठ की लाज।

आम बंदे की भैन नूं भी कोई इस तरीके दे नाल व्यवहार करदा, उन्हें भी आपे तो बाहर होना सी, उते राजा सी, उन्हें ते कम करना सी। लेकिन फिर रावण नूं दुष्ट जालम जावर ऐसा क्यों आख्या गया? हार गया। बस इन्नी गल है। और मैं अर्ज करा, तुसीं इतने सारे बैठे हो ते किसी हिंदू दार्शनिक नूं भी कह देना सही, अगर इत्थे स्रोता दे रूप विच बैठा होवेगा ते अपनी दूर दृष्टि नाल सोचेगा ते बिल्कुल सही है, अगर रावण जित जांदा इस देश दा, भगवान रावण होना सी, राम नहीं होना सी। इन्नी मैं अर्ज कर देना, पूजा रावण दी होनी सी, राम दी नहीं होनी सी हिंदू जगत विच। पर राम दी क्यों होई? राम जित गया, रावण हार गया। ते हारे को हर नाम, हारे दी मां कौन पकड़े? कलम दे धनी, जबान दे धनी, फिर ओदी उपमा कर दें जो जित जांदा है। पर कर्मा लोकी ओदे आले दुआले कर दें जो जित जांदा है। जो हार जांदा है, हारे को हर नाम, हुण हारे ओदी कौन बां पकड़े, हारे ओदा कौन साथ दे गए? ये गरूब होंदे सूरज दी कौन बां पकड़े? इस वास्ते कलम दे धनिया ने, दिमाग दे धनिया ने, जबान दे धनिया ने राम की उपमा दे जोर लाया, ते रावण दी निखेधी दे जोर ला दिता क्योंकि हार गया। तो हारे हुए ने की साडा बिगाड़ लेना? मर गया, उस मरे हुए ने की साडा बिगाड़ना? बाबर जब जिंदा सी ते बाबर नो जाबर कहण वाले ते केवल गुरु नानक सन, ते उन्होंने कह दिता सी सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बेला, ऐ बाबर जे तू मर जाए ते कबर च चला जाए ते फिर मैं तेनू जाबर आखा की मैंने रखदा है, मैं तेरे मुंह दे ते तेनू कहना के पाप की जंजले काबलों लाया जो ही मंगे दान वे लायो। ए बाबे दी हिम्मत, सतगुरु दी हिम्मत। तो रावण नूं दुष्ट ते होर तरह तरह के इल्जाम नाल निवाजना यह साहित्यकारां दा काम बन गया, क्योंकि हार गया सी ते उन्हें बिगाड़ना की सी। जितया होया भगवान बन जांदा है, अगर पुरश होवे ते जितया होया भगवान बन जांदा है, ते जे नारी होवे ते जीती हुई चंडका बन जांदी है, दुर्गा बन जांदी है। लोक इंज उपमा करन लग पैंदे ने, लोक इंज महिमा गायन करन लग पैंदे ने। लोगों की मूलता की कोई जो है पैमाइश है कि मैं करनी? दुनिया तो मूल है, बहुत मूल है, बस जाए। शैतान भी जित जाए तो जाए भगवान है, जे चंडालन भी जित जाए तो दुर्गा है, चंडका है, और की है। हारे को हर नाम, हारे उदा कौन साथ दे दे, हारे उदी कौन बां पकड़े? पुरुष जित जाए भगवान, नारी जित जाए जो है दुर्गा। पर हुण सवाल यह पैदा होंदा है, ऐसा शक्तिशाली रावण, विज्ञानिक, धार्मिक, जज्बाती, भावक, सर्वगुण संपन्न, हार किवें गया? तो मैं इत्थे अर्ज करा क्यों हारिया? घर का भेदी लंका डाले, ओदा विरा विवेक्षण, ओ जा रलिया राम नाल। मैं अर्ज करा दशहरे वाले दिन जब रावण नूं फूक दें ना, ते फूकण वाले भी पहले रावण नूं मत्था टेक दें, उहदी परिक्रमा कर दें। अंदर मन विच भाव है कि ब्राह्मण सी, विद्वान सी, चार वेदां दा पाठी सी, शिवजी दा उपासक सी, इहनूं अग लाण लग्गिआ करदे ते पाप पाया, पर हुण की करन, हार गए सी, हुण हारे दी बां कौण पकड़े? फूकना भी है ते मत्था भी टेकना है, दोवें कम इकट्ठे करदे ने, इक नहीं इकट्ठे। लेकिन अंदर जमीर कहती है कि बंदा विद्वान सी, बंदा भगत सी, बंदे च कोई खूबियां सन, बंदे च कोई गल सी, तो अंदर एहसास है। वह जिहड़ा एहसास है वह परिक्रमा करन ते मजबूर करता है, वह जिहड़ा एहसास है वह मत्था टेकन ते मजबूर करता है। तो हारिया क्यों? दुविक्षण ने राम नूं कह दिता कि किस तरह हार सकदा है, गुरु तैनूं मैं दसा। बस उसने गुरु दसे सारे ढंग तौर ते तरीके उसने दसे, ते विभीषण एक होवे ते रावण जैसा शक्तिशाली बादशाह हार जांदा है, ते खिमा करनी ए कौम क्यों हारी? इत्थे ते मैं देखिया सैकड़े विभीषण, एक नहीं सैकड़े। मैं जिस जिस शहर विच गया, सिंह सभावां दे जे प्रधान विभीषण, उन्हां दे सिकत्तर विभीषण, इंज हराई दा कौम नूं, इंज मारो।

टूटे हुए पाटे हुए और राजनीति ने पाड़े है और ये चारे गुर मौजूदा राजनीति ने वरते ने इतनी मर्ज करने किधरे किधरे वो शरण पे ने क्योंकि मैनू भी कुछ चंगे चंगे प्रतिष्ठित बंदे आके हाथ जोड़ के कहने लगे ज्ञानी जी तुसी कथा वाचक गुरबाणी की कथा करते हो तुसी केड़े पुठे पासे पै गए। तो मैं जिस पासे मैं पया एक पुठा पासा जाता कितने है पहले मैं दस दे कि मंजिले मकसूद की है एदा टिकाणा की है। जो कुछ मैं कह रहा इतना ही है ना कि कौम नूं अपना हक मिले कौम ते तशद्दुद होया जुलम होया कौम नाल बेइंसाफी हुई है तो यही कुछ मैं कह रहा। नहीं जी नहीं तुसी कथा ही करते रहो जी वही ठीक है वही ठीक है। तो मैं उन्होंने कह दिता मैं कि तुसी चाणक का पहला गुरु वरत रहे हो ये नहीं चलेगा मेरे ते शाम शरण पै जाओ हाथ जोड़ के गल करो हलेमी नाल पेश आओ। तो दूसरा चाणक ने राजनीति का गुण दसिया है मैं फिर अर्ज करा दाम। तो मैं डर है क्योंकि अज तक दाम दे हेठ कई दिखते रहे बड़े बड़े दिखते रहे तो नोटा के थे इन्ह राजनीतिकों को बथेरे ने बड़ा सिलसिला इन्होंने कोई कमी है इन्होंने लखा के ढेर अगों ला लेने और अज तक राजनीतिक दिखते रहे। तो मैं बाबा दीप सिंह के स्थान पर बैठ के थोड़ा जहा माण करता तो माण में चोट ना लगे कि पंच सिंह साहबान भावे लखनपति तो नहीं तो लंबी चौड़ी इन्हों की कोई जायदाद नहीं है कोई ऐसी गल नहीं है पर मैनू उम्मीद है कि सिंह साहबान अगर दो लोगों की दौलत भी इन्हों के कदमों रख दी गई नहीं बिकनगे। दरबार साहब के अकाल तख्त की मान मर्यादा बना के रखे मैं पूरा भरोसा है पूरा यकीन है। राजनीति का यह गुण है गुर है कि दाम नाल खरीदो क्योंकि मैं इस वास्ते विचार मैं पूरी के रस्ते च दो तीन बंदे जिस ढंग के मैं मिले तो जिस ढंग की उन्होंने गल की और एक गल दिल्ली तो ही आरंभ हुई है मेरे नाल मैं तुम कि पुठे पासे पै गए। तो मैं उन्होंने यह कह दिता मैं कि तुम दो गुर मेरे सामने वरत लेने तो तीजा भी वरत के देख लेना कोई सजा देनी है तो सजा दे देना। वो भी फिर मैं पता चल गया रात को भी थानू ज्ञानी जी अरेस्ट कर आ रहे हैं। मैं चलो इंज सही हमें तीजा गुर वरत दे पैने दो वरत लेने इन्होंने मैं इन कि ना समझना कोई अपनी बहादुरी कि अपनी ईमानदारी थोड़े सामने जाहिर कर रहा इस वास्ते कह रहे हैं कि तुम हर एक ने सावधान होना है। यह चार राजनीति के गुर ने राजनीतिक लोग अपना देने शाम शरणी पै जाओ हाथ जोड़ के गल करो उपमा करो महिमा गायन करो काबू कर लो दाम झोली में कुछ पैसे सुट दो कुछ रुपए दे दो कुछ नोट अगे रख लो खरीद लो चुप खामोश हो जाओ। तो दाम नाल भी काबू नहीं आया शाम नाल भी काबू नहीं आया दंड दे उन्हें सजा दो राजनीति का तीजा गुण। जो हम दंड नाल भी काबू नहीं आया जेल च भी पा दिता है तशद्दुद भी किया टॉर्चर भी किया सब कुछ किया तो नहीं काबू आया हम भेद पाओ पाड़ो हूं एक दूजे नाल तोड़ो दूजे तीजे नाल तोड़ो तीजे चौथे नाल तोड़ो। तो मैं देखता पे इस अमृतसर के चा के परसों का एक चौथी नीति भी इतने चल रही है उन्होंने वो तोड़ो उसके नाल तोड़ो क्षमा करनी ये तो असं कमजोर हो जाएंगे। राजनीति का यह चौथा गुर वरत्या जाता हथियार है उन्होंने कि हम पाड़ो भरावान मुखालफ बना लो एक पार्टी में चार चार हिस्सों तकसीम कर दो। मैं अर्ज करा जो शहीद होए जो जेलों में ने इन सारियों का मकसद एक समझ लो दो ना समझना। अगर तुम दो मकसद समझ लै तो मौजूदा जिहड़े दौर के राजनीतिक ने सफल हो गए असं हार गए तो सफल हो गए उन्होंने तो पाड़ दिता सन उन्होंने तो इतने अमृतसर के साढ़े दो टुकड़े कर दिते। जो शहीद होए ने जो जेलों में ने या जो होर हर तरह के वसायल जुटा के कौम का सम्मान कायम करने की कोशिश पे करते हैं सबनों एक समझो और जिदे मूह देशों पाड़न के बोल समझ निकलन समझ लेना यह उन्होंने राजनीतिकों के जेर अखर बोल रहे हैं।

0: हाँ जी, आज तक जितने पाप कमाए सन, ते पाप कहने किसनू कहोगे? पाप, पाप ते पुण दी बड़ी चर्चा है। ते मैं अर्ज करा, इस्लाम जिसनों पाप कहिंदा है, हिंदू धर्म उसनों पाप नहीं कहिंदा। हिंदू धर्म जिसनों पाप कहिंदा उन्हों ईसाई पाप नहीं कहिंदे। ईसाई जिन्हों पाप कहिंदे उन्हों यहूदी पाप नहीं कहिंदे। हजरत ईसा शराब पी लेंदे सन, गऊ दा मांस मुहम्मद साहब खा लेंदे सन, मछली स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है खा लेंदे सन, मैदाने जंग दे महाभारत दी जंग दे श्री कृष्ण झूठ बोल लेंदे सन। और उन्हें कहा, युधिष्ठिर कह दे अश्वत्थामा हथो मर गए। हुण किहनूं पाप आखोगे? की पाप है? किधरे कोई अवतारी पुरुष झूठ भी बोल लेंदा, किधरे कोई गऊ भी खा लेंदा, किधरे कोई मछली भी खा लेंदा, किधरे कोई शराब भी पी लेंदा। ते कहिंदे धर्म ते ओही है जिहड़ा निर्मल कर्म ते खड़ा होवे। जेड़ा धर्म है निर्मल कर्म से नहीं खड़ा, वो धर्म पखंड है। सतगुरु ने आप कह देता है, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागासी लूटे, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटे। केड़ा धर्म पखंड है जो मलीन कर्मा ते खड़ा है? कर्म धर्म जिन्हा कर्मा देते धर्म खड़ा है, किड़े कर्मा देते? फोकट कर्मा से, व्यर्थ दे कर्मा देते। तो साहब कहने उत्ते पखंड है, पर हूं इतने निर्णय करिए निर्मल कर्म केड़ा है, फिर केड़ा पवित्र कर्म है, किसनों निर्मल कर्म मनी है? क्योंकि दुनिया भर दे अवतारी पुरुष ऋषि मुनि संत जना दे निर्मल कर्म ते मलीन कर्मा की व्याख्या करी, ते सारिया दे निर्मल ते मलीन कर्म मिलते ही ने भिन्न भिन्न। किनू पाप आखोगे, किनू पुन आखोगे? तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दो पंक्तियां विच निर्णय कर दिता है कि निर्मल कर्म केड़ा है, श्रेष्ठ धर्म केड़ा। लोकी एक मुहावरा धार्मिक दुनिया बड़ा गलत वरते हैं, बी शुद्ध हिरदे नाल बाणी पढ़ो। जे हिरदा ही शुद्ध हो गया तो बाणी की पढ़नी? बाणी इस वास्ते पढ़नी हिरदा शुद्ध हो, इंज कहना चाहिए। लोकी कहने शुद्ध हिरदे नाल गुरुद्वारे जाओ, हद हो गई, कमाल की गल। ये तो इंज हो गई गल, बई इशनान करके बाथरूम दे जाओ, इशनान करके जो है इशनान घर दे जाओ, फिर इशनान घर दे जाने की की लोड़ है जे इशनान पहले ही कर लिया? गुरुद्वारे जाओ ताकि अंतिशकरण शुद्ध होए, गलत है। पर लोग कहते हैं मन एकागर करके बाणी पढ़ो, गलत कहते हैं। बाणी पढ़ो ताकि मन एकागर होए, जप करो ताकि मन एकागर होए, गलत इतनी है। पर कहते नहीं जी, एकागर मन नाल बाणी पढ़ो, मुहावरा गलत है। मन शुद्ध करो तो बाणी पढ़ो, तो मन कि शुद्ध करिए? अगर बाणी पढ़ने की की लोड़ रह जाती है जो मन शुद्ध हो गया? साबण ते पानी दी ते इस वास्ते लोड़ है ना, कपड़े दी मैल कट छड़ी ते कपड़ा निर्मल है, साफ है, स्वच्छ है, तो साबण ते जो है पानी दी लोड़ की। तो मैं अर्ज करा, कुछ मुहावरे धार्मिक दुनिया दे गलत वरते जांदे ने, सानू इन कहना चाहिदा है हिरदा शुद्ध हो सके इस वास्ते गुरुद्वारे जाइए, बाणी इस वास्ते पढ़नी है हिरदा शुद्ध होवे। पर हुण सवाल यह पैदा होंदा है, निर्मल कर्म केड़ा है? ते धर्म ओही श्रेष्ठ है जेड़ा निर्मल कर्म दे उत्ते खड़ा है। तो जो निर्मल कर्म ते नहीं खड़ा होते पखंड है, कर्म धर्म पाखंड जो दीसे लूट है। तो सतगुरु ने अपने ढंग नाल निर्णय कीता है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म। ते दो पंक्तियां विच निर्णय इस गल दा है कि निर्मल कर्म केड़ा है ते श्रेष्ठ धर्म केड़ा है। ते दो सवाल ने, इन्हां दो सवालों का जवाब एक दिता गया। इन्हों भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कहिंदे ने, प्रश्न अनेक एक जाए उत्तर अलंकार मानो तें चित्र। प्रश्न एक होवे, प्रश्न अनेक होवन,
1: सोरठ राग दे अंदर गुरु अर्जन देव जी महाराज का बख्शिश भंडार हुक्मनामा परंपरा अनुसार इस दी व्याख्या दे नाल नाल अज दा ए दिन जिसनू दिवाली कहिंदे ने, करीबन करीबन समुचे भारत देच सारियां ही कौमां सारियां ही संप्रदावां दी तरफों मनाया जांदा है और मनाया जा रहा है। इस देश देच केवल इको एक संप्रदा है जिस दे दीवे अज दे दिन बुझा के रख दिते गए हैं, और ये कौम अज दिवाली नहीं मनाएगी। दिवाली न मनाने का मतलब इतना है, तूफानी हवावां ने साडा दीवा बुझाया है, साडे घर अंधकार कीता।

घर विच वेड़े विच सेन विच निम दा दरखत लगाया ते गुआंडी ने पड़ोसी ने आखिया भलिया किसे मिठे फ्रूट दा दरखत लगा दो नाल छाया मान दो नाल फल खान दो भला निम दा दरखत घर विच लगाने दा की फायदा इंदी डाली इंदी टाणी इंदे पत्ते हर एक चीज विच कुड़कदन ते लगाने वाले ने आख्या मैं रोज सवेरे उठ के शायद घोल के इंदियां जड़ां विच पावांगा और रोज गुड़ ते शक्कर जेड़ा पानी इस नूं दिया करांगा उस विच घोलांगा जदों इस नूं बीजन लगा इस दी जड़ दे कोल मिश्री दी दली टिका देना ते जदों एनी मिठास इंदियां जड़ां विच पावांगा कि निम मिठास नहीं देगी इंदियां टाणियां विच्चों मैनू शहद दा रस नहीं आवेगा। पड़ोसी ने आख्या तू बड़ा भोला है ये तेरे हिरदे विच मुगालत है तेरा घोल के पाया होया शहद निम दा सुभाव नहीं बदल सकता उन्दे सुभाव विच कुड़त्ते ने

जगत रोग, जगत बीमारी, सारे जगत दे बीमारी, सारी दुनिया जिस दी लपेटे जावे, कुछ एक नु छड़ के जो जो दी से सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। अहम भाव हौमे दा मतलब है मैं हां और मैं होवा, तू नहीं है, तू कौन है? मैं हां मैं होवा, अजोके दौर दी बहुत वड्डी बीमारी। पर ये ना समझ लेना बाकी जड़ियां चार बीमारियां ने ओ नहीं ने, ओ दबियां होईयां ने, ओ उपसाहट नाल पैदा होंदियां ने, वक्ती पैदा होईयां चलियां गईयां, जिवें जुकाम लगया चला गया, जिवें मत्था दुखण आया सवेरे घंटे बाद ठीक हो गया। हुण ठीक है एक अद गोली लई ते मत्थे दी पीड़ ते चली गई, पर एक अद गोली नाल शुगर थोड़ी जांदी, कैंसर थोड़ी जांदा है, ये जांदा है तपेदिक थोड़ी जांदा है, ये ते लंबा इलाज। होमे एक गोली नाल जान वाली नहीं, एक पुड़ी नाल जान वाली नहीं, ये लंबी बीमारी है। होमे दीर्घ रोग है दारू भी, इस समान ये ते दीर्घ रोग है, ये ते लंबा रोग है, ये लंबी बीमारी है। एक गोली खांदे नहीं, एक मत्थे दी पीड़ा थोड़ी है, गोली खादी ते दूर हो गई, इस तरह की गल नहीं है। कई ऐसे ने जो लंबी बीमारी नू छेती खत्म करना चाहते हैं, भाई नहीं एक गोली खाइए तो ठीक हो जाए, और फिर संता महानता दे डेरिया और इस तरह के डिंबी गुरुआ के चक्कर च पैंदे ने, भाई ऐसा मंत्र दे शाम तक ही गल बन जाए, तो राधा स्वामी देंदे ने आओ बस 10 मिनट साधना करो अनाहद नाद वजन लग पाएगा, ते कन्ना दे उंगलियां देख के उदे कोल जाप कराओ, ते कन्ना दे जिहड़ी शां शां दी आवाज होवे ठीक है अनाहद नाद है जी, सुन ब्रह्म ज्ञानी बन गए ने जी, संत जन बन गए, ये पखंड चलेगा। बहुते रोगी होवन ते नकली दवाइयां बहुत चल पैंदियां, और नकली दवाइयां दे उत्ते लोगां दा विश्वास बहुत हो जांदा है। नियम हकीम उन्हां दी बन आउंदी है, खिमा करनी धार्मिक दुनिया दे इस तरह दे नियम हकीम थानूं कदम कदम ते मिलणगे। मंत्र तंत्र अकाली मैनू परचे वंड रहा सी ते परिक्रमा ची ते उचेचा मैनू भी आके दिते उसने, ते उहदे च जिहड़ी पंक्ति सी वी जिहड़ा निराकार दा जाप करे अवतार दा जाप करे बस उहनू परम गति प्राप्त हो जाएगी। जिन्नियां अवतार संबंधी जिन्नियां निराकार संबंधी पंक्तियां सन ना ओह कठियां कीतियां गईयां, ते संत दास थले कोई लिखिया होया संत दास ते वंड रहे ए जपो गुरबाणी इस दा कहंदी है, तो उन्हां मूर्खां नू कौन समझाए गुरबाणी, ते ए वी कहंदी है रे मन राम स्यों कर प्रीत सरवन गोविंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत, गुरबाणी ते ए वी कहंदी अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब गुण अल्लाह दे कर बंदगी, गुरबाणी ते ए वी कहंदी अल्लाह दी बंदगी कर, राम दा नाम जप गोपाल दा नाम जब गोरख सोए जिन गोए उठा ली करते बार न लागे, उते गोरख है गोरख गोरख जप, इत्थे ते अनेका नाम ने, पर हुण एक नाम दी इस ढंग दी चोण करके गुरबाणी चों ते अपना एक संपर्दा अपना एक मत चलाना आले दुआले लोकां नू कट्ठा कर लेना, ते खिमा करनी धार्मिक तौर ते बंदा ते कोई बहुत सियाणा है नहीं, ते इस तरह की लंबी चौड़ी भीड़ दे च इस तरह के नियम हकीम अपने इश्तहार वंड के नकलियां दवाइया वेच छड़ दें चल जाती है, तो इश्तहारबाजी गुस्ताखी माफ ठीक है युग इश्तहारबाजी दा है, पर कदी फुल ने यह नहीं आख्या कि मेरे च खूबसूरती है मेरे विच महक है, उन्हों इश्तहार कढ़ने पैन किसे फुल नूं, सूरज नूं इश्तहारबाजी करनी पई है वे मेरे च रोशनी है मेरे च प्रकाश है, चंद्रमा नूं कोई इश्तहार लाने पए ने कि मेरे च शीतलता है मेरे च चाननी है मेरे च ठंडक है, हिमालिया पर्वत कोई इश्तहार पिया वंडदा है भई मेरे च ठंड है मेरे च शीतलता है, तेरे च कोई शीतलता है तेरे च कोई गुणा दी महक है तेरे अंदर कोई रब्बी चानना है, तो चानना ही जो है इश्तहार है, तेनू इश्तहार कढ़ाने दी लोड़ ही नहीं है, वो चानना ही

मानस बपड़ा क्या सालाही क्या तिसका मोहताजा रहा जिन हर ख्याया सब किछ तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा धन दिया सुखदाता निखुट ना कब ही जाए आनंद भया सुख सहज समाणे

प्रथम सिनेमर गुरुदेव जी फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा एकाग्रता प्रदान करने आज दा सोरठ राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा जो महान वाक आया है इस विच ऐसे विषय नूं सतगुरां ने छोया है जो करीबन करीबन व्यापक है ते जगत दी समस्या है। मनुख दा कुछ लोड़ां दा जगत है, मनुख दा कुछ लोभ दा जगत है। ये जीवन दे ढंग दोई ने, लोड़ां विच जीवना, लोभ दे विच जीवना, तीजा जीवन नहीं है। कोई जी रहा है लोड़ां की पूर्ति करने है, कोई जी रहा है लोभ की पूर्ति करने है। अक्सर 99% मनुखां दियां लोड़ां पूरियां हो जांदियां। लोभ किसे दा भी पूरा नहीं होंदा, लोभ दा सुभाव है ते पूरा होंदा ही नहीं, होंदा ही नहीं। लोभी मनुख मरदे दम तक अधूरा ही रहिंदा है, अधूरा ही रहिंदा। जगत दे च पूरन शांतमई जीवन ओही जीवदे ने जो लोड़ां दे च जीवे, लोभ दे च नहीं। मैं फिर दोहरावां, लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने, लोभ नहीं पूरा होंदा। लोड़ां दी पूर्ति करन दे फिर तीन साधन ने, बड़े ध्यान नाल सुनना। तीन साधन ने। पहला सिरमौर साधन किरत करने, दूजा साधन मंगना, मंगता, तीजा साधन खोना, लुटना। लोड़ां नूं पूरे करन दे इह तीन साधन ने। किरत करके लोड़ां दी पूर्ति करनी, मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी, खो के लोड़ां दी पूर्ति, और कोई साधन नहीं। जो मेहनत करके लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने किरती। जो मंग के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने मंगता, जाचक, भिखारी। और जो खो के लुट के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने चोर, लुटेरे, डकैत। संसार दे च ए तिन्ने मौजूद ने। ए ठीक है, वड्डा तबका किरतियां दा है, पर मंगतियां दा तबका भी घट नहीं है, ते लुटेरियां दा तबका भी घट नहीं। लोड़ां दी पूर्ति करनी है खो के, लोड़ां दी पूर्ति करनी है मंग के, लोड़ां दी पूर्ति करनी है किरत करके, मेहनत करके। ऐसे भी दुनिया विच अवतारां दे राहीं व्यापक नुक्ते लोड़ां दी पूर्ति लई पेश होए, उन्होंने दरम्याना रस्ता चुनिया,
मेहनत नहीं करनी, खोना भी नहीं, भिक्षु बना देते, मंगना है, भिक्षा मंगनी, मंगना है। मंग के लोड़ा की पूर्ति करनी है। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, वख वख अवतारा ने जिहड़ी उम्मत पैदा की है उन्हां नूं बकायदा नाम दिते ने। जैसे अहले इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ने अपनी उम्मत नूं मुसलमान कहा, महात्मा बुद्ध ने अपनी उम्मत जो पैदा की थी उन्हों भिक्षु कहा, गुरु नानक देव जी महाराज दे नाल जो उम्मत दा जन्म होया उन्हों सिख आख्या गया। सिख ने, भिक्षु ने, मुसलमान ने, सनातन मत हिंदू धर्म दी शाखा एक नहीं है। ऐसा दरिया है जो कई धाराओं दे वगदा है। जैसे मैं देखे अमरकंटक दे बिलासपुर मध्य भारत हुण ते फिर प्रांत होर हो गया छत्तीसगढ़, उत्थे तीर्थ है अमरकंटक, धन गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहासक स्थान भी है। नर्मदा अमरकंटक तो निकलती है कि जद निकल दिए उत्थे इस दिया 70 धारावां ने, 70 टुकड़े ने, छोटे छोटे अगो जाके इकट्ठे हो जाते, दरिया की शक्ल अगे चल के बनती है, छोटिया छोटिया धारा। हिंदू धर्म की सनातन मत की धारा एक नहीं है, ये बहुत सारिया धारावां विच बगदा है और अगे जाके कट्ठा भी नहीं आता। सन्यासी ने, बैरागी ने, ब्रह्मचारी ने, इन्हां दे

0: तिस हृदय नाम
1: वसाया,
0: साध संगत का पाछा
1: पर
0: जानो नानक
1: हर रस पाया।
0: पायो आनंद रहो
1: जा पाओ प्रभ को,
0: किस हृदय नाम वसाया,
1: साध संगत का
0: पाछा पर जान नानक
1: हर रस पाया।
0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
2: गुरु रूप साध सिंह जी हो सनेमल फतेह कबूल करने, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन पवित्र वाक राग टोडी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का मूल जिहड़ा इस विशा प्रकरण चल रहा है, जीवन दे लक्ष्य नूं समझे बिना जीवन बतीत करना व्यर्थ है। तो जीवन का लक्ष्य की है, क्यों जी रहे हैं, जीवन क्यों है, बगौर मुताला करेंगे। किसी ने जीवन का लक्ष्य खाना पीना ही रखे है, एक साधन से लक्ष्य नहीं से। किसी के जीवन का लक्ष्य परिवार है, धन संपदा है, इस तो अगे अज तक मनुख दिया निगाह नहीं गई, इतें ही रुकिया जाए, इतें ही रुकिया। तो साहब कहने ये लक्ष्य नहीं है, जीवन का यह लक्ष्य नहीं है, जीवन का यह निशाना नहीं है, जीवन का यह घर नहीं है। जिहड़े जिहड़े लक्ष्य बनाए ने यह तो साधन ने, साधन लक्ष्य समझ ले तो कुदरती गल है, जब साधन ही लक्ष्य हो गया फिर लक्ष्य तो असल दे भुल जाएगा, भुल जाएगा। तो लक्ष्य बने आया, लक्ष्य भुलिया होया, इसे वास्ते अवतारी पुरुष कहते ने याद करो किसनों, लक्षणों। लक्ष्य की है परमात्मा, लक्ष्य की है ईश्वर, ये भुलिया होया। करीबन करीबन

दूर करना। समाज के तल देते जो बुराइयां आ चुकियां सन ते नैतिकता जो घोर अनैतिकता दा रूप धारण कर चुकी सी, जगत गुरु बाबे ने उस नू दूर करन दी भरपूर कोशिश की थी। इस देश दे बल्कि सारी दुनिया दे ओ दिन खुशकिस्मत दिन सी 1469 ईस्वी कत्तक पूर्णमाशी। दरअसल भागा भरा दिन से जब महाराज दा आगमन होया और आगमन दे नाल ही दिन ते रात सदीवी याद बन गए। वो दिन भी अमर हो गया, वो रात भी अमर होई, क्योंकि उस रात नू उस दिन नू एक अमर पुरुष दा आगमन होया। अमर पुरुष सिर्फ व्यक्तियां नू ही अमर नहीं करदे, बल्कि दिन नू भी अमर कर देंदे ने, रात नू भी अमर कर देंदे ने, साल नू भी अमर कर देंदे ने। गुरु नानक दी याद दे नाल साल याद रहेगा, गुरु नानक दी याद दे नाल दिन याद रहेगा, रात याद रहेगी, कत्तक दी पूर्णमाशी याद रहेगी। और ए पूर्णमाशी जो अनंत काल तो आ रही सी, गुरु नानक दी आमद दे नाल अमर हो गई, महान हो गई। आप दी आगमन, आप दा आवना संसार ते इस तरह सी जैसे मसिया दी रात नू सूरज उदय हो गया, प्रकाशमान हो गया। महाकवि तुलसी दा कहना है, जब जब होए धर्म की हानि, बहड़े असुर अधम अभमानी, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। दसम ग्रंथ देच साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज देवाक, जब जब होए अरिष्ट अपारा, तब तब दे धरत अवतारा। जद जद संसार देच अनर्थ होंदा है, तद तद अवतारी पुरुष संसार ते आउंदे ने। और श्री कृष्ण जी दे अमरवाक ने के ऐ अर्जन, जद जद भी धर्म दी गिलानी ते हानि हुंदी है, मेरा आगमन होंदा ही रहिंदा है, मैं आउंदा ही रहना। दरअसल ओ परिपूर्ण परमात्मा ज्योतिमान किसी दे अंदर महान जोत उजागर करके जगत नू संदेश ते उपदेश देने लई आउंदा है। बहुती गर्मी बहुती तपश कड़कदी हुई लू, इस गल दा आगमन है कि बरखा होवेगी, बरसात होवेगी। होम है, गुम है, तपश है, सेक है, लू है। सियाणे कहंदे ने हुण बदलां दे आउण दे च देरी नहीं, हुण बरखा दे होण दे च देर नहीं है। जुल्म है, तशद्दत है, अनर्थ है, घोर अत्याचार है, तो धार्मिक पुरुष कह देंदे ने कि हुण प्रभु कोई ना कोई अवतार धारण करेगा। समाजिक तौर ते, राजनैतिक तौर ते और धार्मिक तौर ते जद ए देश पस्तियां दे खड्डे दे जाग रहा, उदों गुरु नानक दा आगमन होया, उदों गुरु नानक दा अवतार होया। तुलसा दाई दे मुखार बिंद तो निकले बचन, एते कोई सूर्य आया है, एते कोई आफताब आया है, जगत ते हर बच्चा रोंदा होया जन्म लेंदा है। ये ठीक है कि पशुआं दे बच्चे खामोशी नाल जन्म लेंदे ने, किसे हद तक पंछियां दे बच्चे अंडियां दे चों चहचहांदे हुए निकलदे ने, पर मनुखी बच्चा रोंदा होया ही जन्म लेंदा है। और ये रोना किसे हद तक जीवन भर कायम रहिंदा है। रोंदा होया जमदा है, रोंदा होया जीवदा है, और रोंदा होया ही मर जांदा है। ये मनुख दा अभाग है, मनुख दा दुर्भाग है। अगर ये रोंदा होया ही जमे है ते रोंदा होया ही मर गया है, जीवन यात्रा निष्फल चली गई।